0: जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihan ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुखुम्बु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु

0: विगत 39 वर्ष देखि संचालन नेपाल के पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कंपनी नेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लासिमपाट काठमांडू
1: श्री भाकुरा प्रश्न विचार युवा उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 MHz अब थप खबरहरू अख्तियार दुर्पद अनुसन्धान आयोगले 5 लाख रूपियाँ घुस सहित आन्तर्वासको

0: পর প্রিন্ট মুভিকর্ক রকম তোমার সাবন নম্বর একটি গড়ের সম্বন্ধে সূচনা আদরণীয় সেবাগ্রাহী মহানুভাবহরু তপাইলে আপনো সওয়ারী সাধনকো বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने সওয়ারী কর নবীকরণ বস্তু লগায়ত অন্য কর সম্বন্ধী বিতরণ হেনকা লাগি সম্বন্ধিত यातायात কার্যালয়মা গর কর প্রিন্ট মাগ্ন ব্যাংক ভৌচর গর্ন অগি সওয়ারী কর তথা বস্তু একিম গর্ন তথা কর বুঝাইপছি প্রাপ্ত হুনে বিমা আফুলে বুঝাইকো করকো রকম র আফু সওয়ারী নম্বর একিম গর্ন হুন এসেই সূচনা মারফত অনুরোধ গরিছ
1: কোটি প্রদেশ সরকার আন্তরিক মামলা তথা কানুন মন্ত্রণালয় ফিরাত
0: नेपाल विद्युत प्राधिकरण सोलुखुम्बु वितरण केन्द्र को सार्वजनिक सूचना
2: सम्पूर्ण विद्युत उपभोक्ता महानुभावहरूमा विद्युत सुरक्षा तथा चेतनामूलक सन्देशको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ।
0: विद्युतका पुल तार ट्रान्सफर्मर तथा अन्य विद्युतीय संरचनाहरूबाट सधैँ टाढा रहनुहोस्। भिजेको हातले विद्युतीय सामग्री नछुनुहोस् र बालबालिकालाई विद्युतीय जोखिमबाट बचाउनुहोस्। विद्युत सेवा निरन्तर र भरपर्दो बनाउन आफ्नो विद्युत महसुल तोकिएको समयमै भुक्तानी गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् 60 दिनभन्दा बढी विद्युत महसुल भुक्तानी नभएमा जुनसुकै समयमा विद्युत लाइन काटिनेछ।
1: विद्युत चोरी कानून विपरीत दण्डनीय अपराध हो। यसले दुर्घटना ध्वंसन क्षति तथा विद्युत सेवामा अवरोध निम्त्याउँछ। चोरी देखिमा कानून कार्यवाहीको निर्देश पुलमा आगो लागेको तार नत्रिएको ट्रान्सफर्मर समस्या आएको वा कुनै पनि विद्युतीय जोखिम देखिएमा तुरन्त जानकारी गराई ठूलो दुर्घटना हुने बाटो प्रस्तुत।
0: थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बरहरू कार्यालय प्रमुख 9852852326 प्राविधिक प्रमुख 9852852327 सूचना अधिकारी 9852852126 र काउन्टर 0382204030।
1: समयमै महसुस गरौं, उचालो भविष्य निर्माण गरौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा जनहितमा सार्वजनिक

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुम नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु।

0: उज्ज्वल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साथमा
2: न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलुदुत्कु नगरपालिका पाँच

পর প্রিন্ট মুভি করতে রকম হোক তোমার সাধারণ নম্বর এখন গড়ের সম্বন্ধে আদরণী সেবাগ্রহী মহানুভাবহরু তপাইলে আফ্নো সওয়ারী সাধনকো বার্ষিক রূপমা বুঝাউনু পর্ने सवारी कर नवीकरण वस्तु लगायत अन्य कर सम्बन्धी वितरण हेर्नका लागि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर कर प्रिन्ट माग्न बैंक भोचर गर्न अघि सवारी कर तथा वस्तु एकिन गर्न तथा कर बुझाएपछि प्राप्त हुने बिमा आफ्नो बुझाएको करको रकम र आफ्नो सवारी नम्बर एकिन गर्न हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय

0: बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह प्रथम वर्ष को बढ़ने संबंधी सूचना।
1: विगत 34 वर्ष देखि योग्य दक्ष अनुभवी शिक्षक द्वारा शिक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएको यस सुनखुम्बू बहुमुखी कैंपस में शैक्षिक सत्र 2083-84 में स्नातक तह बीए बीएड र बीबीएस प्रथम वर्ष को भर्ना कार्यक्रम निम्न अनुसार भएको बेला संबंधित विद्यार्थीलाई जानकारी गराइन्छ।
0: भर्ना कार्यक्रम हुने मिति
1: भर्ना मे 2083 साल श्रावण 1 गति देखि भाद्र 31 गति सम्म। कक्षा संचालन 2083 साल असोज 1 गति देखि। रजिस्ट्रेशन फारम भरिने 2083 साल मंसिर मसान्त सम्म।
0: थप जानकारी का लागि सम्पर्क नम्बरहरू 9851010556 9841363537 र 0385204556। उद्धव कुमार शर्मा कैंपस प्रमुख सोलुखुम्बु बहुमुखी।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदनी सेवा ग्रहण महानुभावले यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रबन्धन सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन को निर्देश उक्त कक्ष नीचे को सेवा प्राप्त होने सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष का संपर्क नाप्ने अनुरोध करने सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई घरासना अधिकार कार्यालय प्रमुख शर्मा संपर्क राख्न सक्नुहुनेछ। कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय

0: बोलू एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य फिल्म स्टूडियो टाइम
2: इट्स 1 PM दिवसको 1 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलुदूत को नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु
3: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सूर्य फिल्म सूर्य फिल्ममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य फैन स्टूडियो टाइम
2: इट्स 4 पीएम अपराह्न को 4 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: बेंगलुरु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सूर्या सिंह स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 PM रात को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुमा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू
3: Wherever you are, stay connected with the wider world with the

0: प्रतिशत दुर्घटना वा आपत का बेला चाहिने सहयोग का लागि छ उता निशुल्क हटलाइन नंबर आफ्नो मोबाइल में सेव करी राखौ।
1: प्रहरी सहयोग चाहिँदा 100,
0: दमकल का लागि 101,
1: एम्बुलेंस सेवा चाहिँदा 102,
0: ट्राफिक प्रहरी का लागि 103,
1: बाल बालिका खोज तलाश का लागि 104
0: र विपद व्यवस्थापन का लागि 1177।
1: यी नम्बरहरुमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
0: सार्वजनिक हित का लागि उज्यालोको अनुरोध।
2: अब इंटरनेट ढिलो होइन, छिटो स्मार्ट र सुरक्षित। इंट्रोड्यूसिंग वाईफाई 6 विथ सुविसु सुरक्षा।
0: वाईफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट।
2: साथै सुविसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित।
0: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ।
2: सुविसु, छिटो पनि सुरक्षित पनि। थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
0: 9 42 38 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8